हर गुण जान लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख लाख

चंदन काटा गुर का सिख बकार त्याटा सात गुर सिखो नाम कांदी गुर का सिख बट भागी ही सात गुर सिख हर भक्त सवार नानक सात गुर सिख पाव जी अनल सुमार।

सबे गुरु का मन मान है सो सेव का परमेश्वर की गात जाना सो सात गुर जस हृदय हर नाम अनक बैर गुरु का मन जाय सर्व निधान जी का दाता अठ पह पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन मह पार ब्रह्म एक है आप नहीं काश परम सहस।

कर गह गवे। सुन कर वचन कर्ण आघन मन संतु घातम प्रतियान पूरा गुर क्या जा का मंत्र अमृत दृष्टि खाऊ संत गुण बेअंत की

बिचारी। हर की भगत कर मन लाई मन वंछत नान फल पाय संग न चाल स्थिर तना। तू क्या लुपटावे हम मूर्ख मना सतमीत कुटा बार बन तयंति कहु तुम कम सनाथ। राज रंगमय विस्तार इंद्र कहु कम छुटकार सहस्त्री रथ असवारी जूठा डंफ जूठ पा सारी जिंदी दह बुझा न बिगाना न विसार नान कुछता न। गुर की बात तुम लिख यानी भगत बिना भटू बे सियान हर की।

अनकराज भोग बटे आई हर के नाम की कथा मन पाई वह भोजन का प्रसंगीत रसना जापति हर हर नीत पली सो करण सो बात नवांत हरदा वसे पूर्ण गुरमंत साध संग प्रावधि हो निवास सर्व सुख नानक प्रकाश सरोक सर्गुण निर्गुण रंकार सुन समाधि आप आपन किया नानकाया पी प्रजा पष्टपति जब अकारि हु काश न दृष्टि ताप आपन तब कहति होता जब तारी अपन सुन समाध ताब बैर विरोध के संकमाद जब

जावि कह रघु अपार तव नर स्वर्ग कह कौन अवतार जब निर्गुण प्रभु सहज सुभाई तब शिव सकत कहु कितठाई जब आप अपनी जूत तर तब कौन निडर कौन का डर अपन चरत आप करण है नानक ठाकुर अगम अपार अविनाश सुख अपन आसन तह जन्म मरण कह कह विनाशन जब पूर्ण करता प्रभु सूई तब जम कुस कह कि सूई जब अवगत अगोचर प्रभु का तब चित्रगुप्त किस पूछत लिखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधि तब कौन छुटे कौन बंधन बाधि अपना पाप ही आचर जा नानक अपन रूपाप ही पर जा जह निर्मल पुरख पुरख पै तूता तह बिन मैल कह हो क्या तूता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश तह शाल शिदर लगत कहु गीस जह जूत स्वरूपी जो संग समाव तह किस पूख कौन द्रवताव कर्म क्रावन करने हा मान करती का नाह सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कौन वायु बाप मित्र सुत पाई

जाए। सेवक पाओ सेवा बनाए, पंभूज परम पद पाए, स्त्री ऊपर नहीं विचार, जाकर मन बस अंदर अंकार।

अमृत वचन हर के गुण गायऊ प्राण तरन कह स्वाऊ आठ पहरु प्रभिखौ नीरा मिटा ज्ञान बिन संधीरा सुन प्रिय हृदय बसावह मन इच्छे नन कल पावह हरत भरत दुई लिहु स्वैर राम नाम अंतर्योर तार।

सूरा नानक ताकि कार्य पूरा मैत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पीखता उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाकी अनुरूप सफल दर्शन सुंदर हारूप तान सेवा सेवक परवान अंतर

पूरी पाई। सुअंतर सुबह अनंत कट कट व्याव्रह भगवंत तरण वाहि आकाश पायाल सर्वरूप पूर्ण प्रतपाल बान तेन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पावन पाणी वह संतर माहि चार कुंट तह जिसे समाहि इति बिना नहीं कोठाऊ गुरु प्रसाद नानक सुख पाऊ बीत प्राण सिमरत महदीप शशि जल सूर नकी अतर महीप बाणी प्रभु सब को बोलया बडूल न कब हु डोला सर्व कलाकार कील कील मुगन पाईया गुण है अमोल सर्व ज्योत मह जाकी ज्योत तारहि स्वामी ओत पोत गुरु प्रसाद परम कांदा स्नानक तिन मय हुए सास संत जना का पीकन सब ब्रह्म संत जना कह हृदय सब धर्म संत जना सुनि सो वचन सर्वव्यापी राम संग्रचन जिन जाता तस गिह रहत सात वचन साधु सब कहत जो जो हुए सोय सुख मान कर्म क्रम हार प्रभु जाने अंतर बसे बाहर पियो ही नानक दर्शन दी सामोहि आप सात किया सब सात देह प्रति सगली उत्पात देह पावे तंकर विस्तार देह पावे तई कंकार अनक कला लगी न जाय देह पावे तह लय मलाय कवन निकट कवन कहिया दूरा पियाप आप पार पूर अंतर्गत जसव जनाय नानक जना बुझाय सर्वभूता वरतार सर्व नयना पीपनहार सकल सुमगरी जाका तना पंजा सब सोना आपन जान केल बनाया गया कर किनी माया सब कमर्थ अलिप तो रहे जो किस कहना सो आप ही कह आगे आवे आगे जाय नानक जा पावे तले समाय स्थिर हुए सो नाही बोरा उरे कहु कना काश कर आपला कर दूत यातनी की आपे जाने अपने जी की अवसाच तार सब साच उत्पूत आप संग्राच ताकि गात में तक कहीं ना जाय दूसरो ये ता सोजी पाए तस्का किया सा प्रवान गुरु प्रसाद नानक हो जान जो जान तस सदा सुख हुए आप मिलाई लई प्रभु सोए ओहो धनवंत को

साधनगण सुप्रसन्न भय प्रदीप पूर्ण हुई सेवक सेव आल जंजार विकार ते रहते राम नाम सुन रसन कहते कर प्रसाद दया प्रवतारी नानक निभि के महामारी प्रभु की उस्तत करहु संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसा सोतन धान सर्व इच्छा तक पूर्ण हुए प्रदान पुरख प्रगट सब हुए सबते ऊच पाय स्थान ब्रह्म हुआ वन जान हर तन खाट चले जन सोये नानक जिस प्राप्त हुए कीम सांत युद्ध नव निध बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध विद्या तप जोग तप ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कौन प्रगा सबके मध्य सकृति उदास सुंदर चतुर तत् कविता समदर्शी एक दृष्टिता इह पाद तिह जानक मुख पने गुरु नानक नाम वचन मन सुने इहु निधान जप मन पूए सब जुग महता की गात हुए गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमृत शास्त्र वेद बखाणी सगन मतात केवल हर नाम गोविंद भगत का मन विश्राम कूट अपराध साधु संग मिटाय संत कृपा।

विचार। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय। मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की सुध। मन्ने मोह चोटा न खाए, मन्ने जम के साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय। मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पथ्यों प्रगट जाए। मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से दीसन वंद।

न नानक पवे न भिख। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय। पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगह मान। पंचे सोह हे दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान। जे को कह करे विचार करते कह करने नाही सुमार। तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे को बुझे होवे सचियार तबले ऊपर कीता पार।

निरंकार असंख्य जापे असंख्य पाओ असंख्य पूजा असंख्य ताप ताओ असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ संख जोग मन रह उदास असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार असंख्य सती असंख्य दातार असंख्य सूरमा भाखसार असंख्य मोहन लिव लाए तार कुदरत गवन कहां विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर राम कोर संख अमर कर जाहे जोर असंख गल वढ़ हत्या कमाहे संख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फेराहे संख मलेश मल पाक खाहे असंख।

लागा सोड कोड कपाल थके वेद कह निकवात। सहसे अठारे कहन कतेबा सलो एक धात लिखा वेता लिखी है लिखै होए विनाश। नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप। सालाही सालाही एती सुरत न पाईया नदियां अतवा पवै समुंद न जानी। समुंद सा सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मन हो न विसरै। अंत न सिफती कहन न अंत अंत न करण देन न अंत अंत न वेखण सुन न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार।

सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोय राती रुती थिति वार पवन पाणी अग्नि पाताल तिस वे धरती थाप रखी धर्मसाल तिस वे जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार।

माता करत महात दिवस रात दोय दाई दाया खिले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया।

0: मन्नै जम कै साथ न जाए।
1: ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए।
0: मन्नै मार्ग ठाक न पाए मन्नै पथ से प्रगट जाए।
1: मन्नै मागना चले पंथ मन्नै कर्म सिद्धि संबंध।
0: ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए।
1: मन्नै पावे मोक्ष द्वार मन्नै परवार सदार।
0: मन्नै तरै तारे गुर सिख मन्नै नानक भवे न भिख। पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगह मान। जे को कह करे विचार करते कह करने नहीं समार। जे को बुझे होवे सचियार तबले ऊपर के

असंख मूर्ख अंधक होर असंख चोर हराम खोर असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे।

गुर की टेक रहो दिन रात, गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई ना मिटे दा, गुर परमेश्वर एको जान, वाहु गुर परमेश्वर एको जान, ज्योतिष पावै सो परवान, गुर परमेश्वर एको जान, ज्योतिष पावै सो परवान, सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाओ, जिस पास बैठे आ सोइए सबना दा

0: सब जी तेरे तू सब सदा मेरे शाह सब तुझी माहे समाहे सब ना की तू आस है मेरे प्यारे सब तुझे त्यावे मेरे शाह ज्यों पावे त्यों रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह सब ना की तू आस है मेरे प्यारे सब तुझे त्यावे मेरे शाह ज्यों पावे त्यों रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतगुरां दी निघी मिठी गोदा रंग रस मांडी गुरु प्यारी साह संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला सारिया दूरों नेड़े आई संगतां दा तहे दिलों धन्नवाद किया जाता है जी। अते कुछ कु बेनतियां हन, जिस तरह आप देख रहे हो डिस्प्ले बोर्ड डिस्प्ले स्क्रीन के उत्ते शाम नू अज अमृत संचार होएगा जी तकरीबन 3:30 बजे। सो जिन्हां गुरु प्यारियां संगतां ने अभिलाखियां ने अपना मन बना लिया है अमृत अमृत पान करन दा, उन्हां दे चरणां च बेनती है कि अपने नाम सेवादारां नू लिखा दें तां जो उस मुताबिक तैयारी की जा सके। सो अमृत अभिलाखियां दे चरणां च बेनती है कि शाम नू केसी इशनान करके सिंघां ने पूरी दस्तार सजा के तैयार बार तैयार हो के 3:30 बजे दरबार हाल च पहुँचने की कृपालता करनी है जी। पर उस तो पहला अपने नाम जरूर सेवादारा नू लिखा दें जी। तो जिहड़ियां संगतां जा रही हैं फ्लाइट के राही उन्हां दे चरणां च बेनती है कि वह अपनी फ्लाइट की डिटेल जो है नीचे रिसैप्शन से चैक कर लैन। जो अज संगतां जा रही हैं वह अपने टू गो बैग्स भी शामी उतों रात को जाने वेले अपना फ्रंट डेस्क तो लैके जाण जी। गुरु प्यारी साध संगत जी सारे संगतों के चरणों में बेनती है कि असी इस आत्मिक माहौल में बरकरार रखने लिए अपना ज़्यादा तो ज़्यादा समा दरबार हाल में या सेवा में बिताइए ता जो इस आत्मिक माहौल दे विच कोई विघन ना पै सके। तो जो शाम का प्रोग्राम है वो इस तरह होएगा जी, शामी 3:30 to 4:30 बजे तक संगतां नाम अभ्यास कमाई के यतन करनगियां गुरु महाराज की हजूरी में। 4:30 to 5 बजे गुरबाणी विचार, उपरंत रैराज साहब जी के पाठ और गुरबाणी कीर्तन रात के 9 बजे तक चलेगा जी। सो सारिया संगतां जी चरणों बेनती है कि समय सिर पहुँच के नाम बाणी के लाहे लो जी और गुरु दियाँ खुशियां प्राप्त करना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

प्रेम रस आत्म रंग इन्हां दे विचकार शब्द नाम दियां इलाही वस्तुआं दी लेवा देवी व्यवहार वणज वपार सांझ अथवा अंतर आत्मे दे सौदे सहज सुभाए अणजाणे चुप चपीते अदिख अणसुणे अबोल अपोल अछोप ही हुंदे रहिंदे हन। गुरबाणी विच इस विचार दी इउं प्रोड़ता कीती गई है, संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों व्यवहारा, संतन स्यों हम लाहा खाटिया, हर भगत भरे भंडारा। सुख बैसो संत सज्जन परवार, हर तन खाट्यो जाका नाहे समार। प्रेम भगत नानक सुख पाया, साधु संग समाई। नानक हर जस हर गुण लाहा, सत संगत सच फल पाया। गुरबाणी विच साध संगत दी इउं वड़ियाई कीती है, सत संगत हर मन वसै, दुख दर्द अनेरा भ्रम नसै। सत संगत मैं हर उस्तत है, संग साधु मिले प्यारिया, ओए पुरख प्राणी धन जन है, उपदेश करें पर उपकारिया। हर नाम दिरड़ावै हर नाम सुनावै, हर नामे जग निस्तारिया। जो हर राते से जन प्रवान, तिनकी संगत परम निदान। पारस भेट कंचन धात होई, सत संगत की वड़ियाई। भयो कृपाल सत संग मिल संगत मिलाया, बुझी तपत करै पिर पाया। ठांड परी संतै संग बसिया, अमृत नाम तहां जी रसिया। अगन सागर भय सीतल, साध अंचल गह रहे। संत संग जाका मन सीतल, ओ जाना सगली ठांडी। तदे गुरबाणी विच साध संगत लई सानू इउं जाचना करनी सिखाई है, हर जियो आग्या करी अरदास, साधु जन संगत होए निवास। कहो नानक प्रभ बख्श करीजै, कर कृपा मोहे साध संग दीजै। कर कृपा मोहे मार्ग पावो, साध संगत कै अंचल लावो। वडभागी हर नाम त्यावै, हर के भगत हरे, तिनकी संगत देह प्रभ जाचो, मैं मूड़ मुकद निस्तरे। ऐसी मांग गोविंद ते, टहल संतन की संग साधु का, हर नामा जप परम गते। ऐसी मांग गोविंद ते, टहल संतन की संग साधु का, हर नामा जप परम गते। चलदा वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ए सी जी गुरबाणी विचार, आतस दुनिया खुनक नाम खुदाया। कल ताती ठंडा हरनाओ भाग छेवां पढ़िया गया है जी। इस टॉपिक ते ते होर कई अध्यात्मिक टॉपिक ते जो गुरमुख विचारां ने गुरबाणी विचार लिखे हैं, उन्हां दा बाहर स्टॉल लगा है। सो जो नवी संगत है उन्हां नूं रिक्वेस्ट की जाती है कि वह गुरबाणी विचार लैके पढ़न। ये साडा आत्मिक जिहड़ा राह है उन्हूं बहुत सौखा ते सरल कर देंदे हन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।